0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो इमारा पांका वाकी मियार के लिए।